गुरुआं पीरां फकीरां योध्यां बहादुरां दी धरती पंजाब। पंजाबी मां दे होनहार रखवाले पुत्र जो अपने आप नूं नशियां विच बर्बाद कर रहे ने, उन्हां नूं झलमण सिंह टंडे दी कलम मिस पूजा दी जवानी कुछ इउं कह रही है।

0: Ayo, we back. Mentor, Rishi Rich, Justin Sidhu. Play your head and step off.
1: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303 0
5: It's a classic hit. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard

0: No, sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
6: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
5: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
6: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303 0
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.
3: इंग्लैंड में हम पानी को उससे ज्यादा तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी तेजी से कुदरत उसे पूरा कर सकती है। अगर कुछ तब्दीली ना हुई तो 2055 तक हम रोजाना 5 बिलियन लीटर से ज्यादा पानी की कमी का सामना कर सकते हैं। और वेल्स में ज्यादा बरसात वाली सर्दियां और ज्यादा खुश्क गर्मियां पानी के जखीरे पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि हम रोजाना तकरीबन 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत इससे काफी ज्यादा, लगभग 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ आसान तब्दीलियां करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। छोटी शावर लें, लीक होने वाले नल या टॉयलेट को ठीक करवाएं। बर्तन धोने के लिए नल खुला रखने की बजाय एक बाउल का इस्तेमाल करें। डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड का इस्तेमाल करें। पानी कीमती है, इसे महफूज रखने के लिए हमें कम इस्तेमाल करना होगा। लेट्स सेव वाटर को सर्च करें या letssavewater.com पर जाकर रोजाना पानी बचाने के आसान तरीके जान लें।

0: करवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: Something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: इंग्लैंड ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੀ ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ 2055 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ यानी पानी दी वर्तों वध हुंदी है साडे विचों ज्यादातर सोचते ने कि असी दिन विच लगभग 30 लीटर पानी वरतदे आ पर असल च असी 140 लीटर दे नेड़े आ आओ कुछ साधारण तब्दीलियां करिए ते पानी दे बचाव दे विच मदद करिए शावर विच घट समा लगाओ लीक कर रहियां टूटियां या टॉयलेट नूं तुरंत ठीक करवाओ लगातार चल रही टूटी दी बजाय भांडे धोण वाले बाउल दी वरतों करो अते अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन विच इको मोड दी वरतों करो पानी अनमोल है इस नूं बचाउण दे लई सानूं सारयां नूं घट पानी वरतण दी लोड़ है हर रोज पानी बचाउण दे आसान तरीके लई लेट्स सेव वाटर खोजो या letssavewater.com ते विजिट करो

0: looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: उम्मीद ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.
3: 24 hours a day, Sunrise Radio. You don't believe anything a girl say. If you listen close, you hear the hiss of a snake.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में। इसके साथ साथ अगर आप हमें दुनिया के किसी और हिस्से में सुन रहे हैं तो उसके मुताबिक हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इंडिया में सुन रहे हैं तो आपको हम कहेंगे आपका स्वागत करते हैं हम स्वागत। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सुन रहे हैं तो आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन इंग्लिस्तान में तो आप सुन ही रहे हैं। मतलब आप इंग्लिस्तान में अगर हैं और हमारा रेडियो स्टेशन सनराइज रेडियो नहीं सुन रहे तो फिर और क्या सुन रहे हैं? घर वालों की बातें सुन रहे हैं या अपनी वाइफ की बातें सुन रहे हैं या वाइफ अपने हस्बैंड की बातें सुन रही हैं? बहरहाल आप सारी बातों को एक साइड पर रख दीजिए और सुनिए सनराइज रेडियो 103.2 एफएम, इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके साथ साथ अगर आप हमें इंग्लैंड में सुन रहे हैं तो ऑफ कोर्स हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आपके शब रोज कैसे गुजर रहे हैं, आपका दिन रात कैसा, ये दिन रात एक किया हुआ है या दिन और रात अलग-अलग से हैं? कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर इतनी मेहनत करते हैं कि उनका दिन और रात का पता ही नहीं चलता। वो या तो रात को काम कर रहे होते हैं तो दिन को घर वापस जा रहे होते हैं, और अगर दिन में काम कर रहे होते हैं तो रात को घर वापस जा रहे होते हैं। बहरहाल आप किस कैटेगरी से हैं, आपका ताल्लुक किस कैटेगरी से है ये हमें ज़रूर बताएगा। स्टूडियो का नंबर हमेशा की तरह आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा। आप हमें अपने टेलीविज़न पर भी सुन सकते हैं, आप हमें रेडियो प्लेयर पर सुन सकते हैं, ऑनलाइन ऑफकोर्स सुन सकते हैं sunriseradio.fm पर। और इसके साथ साथ आप अपने Amazon Kindle Fire पे भी सुन सकते हैं सनराइज रेडियो की नशरियात। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका हमारा साथ रहेगा अब से लेकर तकरीबन 3 घंटे। नेक्स्ट आइंदा जो 3 घंटे हैं हमारा आपका साथ रहेगा, और तकरीबन मैंने इसलिए कहा है कि इंसान है, आगे पीछे हो सकते हैं हम, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में साथ साथ जो हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले हमें मैनचेस्टर में सुन रहे हैं तो आप हमें DAB के ज़रिए सुन रहे हैं, और लीड्स में भी DAB के ज़रिए सुन रहे हैं। इसके साथ साथ ओल्डम, रॉसडेल, ईस्ट लंकशायर और मिल्टन किंग्स, वाओ, मिल्टन किंग्स में आप हमें सुन पा रहे हैं DAB डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम सिर्फ 24 घंटे नहीं, साल के 365 दिन नहीं, बल्कि हमारा और आपका साथ उम्र भर का है। स्टे ट्यून एंड स्टिक अराउंड।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

ओके सो बात यह है कि गाने तो हम सुनते रहते हैं, इसके साथ साथ हम मूवीज भी देखते रहते हैं, मूवीज के साथ साथ हम ड्रामे भी देखते रहते हैं। मतलब क्या क्या इंसान देखे, सारा दिन मोबाइल भी देखते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो तो हम करते हैं बातें, बातें सुनने के लिए हम रेडियो ऑन करते हैं। बाज़ोकात हम बहुत बोर हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार रेडियो पे क्या चल रहा है, या तो खबरें या तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आपको हर घंटे के बाद जो हमारा खबरनामा मिलता है उसमें आपको खबरें मिलती हैं, ट्रैफिक की अपडेट मिलती हैं, जिससे आप बाखबर रहते हैं कि दुनिया में और आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में, आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है। इससे सनराइज़ आपको अपडेट रखता है। इसके साथ साथ आपको गाने तो हम सुनाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमारे शो में आज नहीं होने वाली है, वो ये है कि फरमाइशी गाने मैं को नहीं चलाने। अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा, लेकिन आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। आप कभी भी हमसे बात करें, और बात करने के लिए नंबर तो आपको पता ही है, और हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306666, यानी कि 4 दफ़ा 6, मतलब 01274306666। आप हमें स्टूडियो में अभी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि व्हाट आर यू अप टू।

सिलसिला जारी, आप हमें कॉल करें 01274306666 पर। अच्छा, ये हमारा एक कह लीजिए कि ये देसियों का एक मामला है कि हम लोग ईमेल्स और टेक्स्ट वगैरह पर बहुत कम यकीन रखते हैं। हम अगर ईमेल कर भी दें किसी को गलती से, या फिर उनको हम मैसेज कर दें टेक्स्ट मैसेज, एक तो ये धड़का सा लगा रहता है कि टेक्स्ट मैसेज अगर आपने किया है तो वो सीन हो गया है या नहीं सीन हुआ। अगर सीन हो गया है तो वो बंदा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ ईमेल्स पे तो खैर ये तरीका नहीं है कि आप चेक कर सकें कि किसी ने आपकी ईमेल पढ़ ली है या नहीं पढ़ ली। बहरहाल होता यह है कि हम लोग ईमेल्स पे और टेक्स्ट पर ये इन चीज़ों पे बहुत कम बिलीव करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी को ईमेल किया तो वो ईमेल कहीं पर घुंस गई है, मतलब कहीं पे खो गई है, उसका कोई नामो निशान नहीं है कि अगले बंदे को पहुंच गई है या उसको रिस्पॉन्ड करने में कितना वक्त लगेगा। लिहाजा हम बिलीव करते हैं फ़ोन कॉल्स पर। हम कहते हैं कि यार फ़ोन करो यार, क्या है यार, मतलब इसमें से पहले चेक करो, मतलब डायरेक्ट बात जब तक बंदे से ना हो हमें तसल्ली नहीं होती। तो बहरहाल आप अपनी तसल्ली रखिए और हमें कॉल कीजिए 01274306666 पर। आपकी फरमाइशें बहरहाल हम नहीं ले रहे, लेकिन अगर आपकी कोई ये फरमाइश है कि आपने मेरे थ्रू किसी को आई लव यू कहना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उनका नाम बता सकते हैं। मैं आपका जो पैगाम है, मोहब्बतों भरा पैगाम, वो पूरी ईमानदारी से थर्ड पार्टी तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।

बेहद बेहद बेहद बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। लाइंस बहुत बिजी, अगर आपकी कॉल नहीं मिल पा रही तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बहुत आपसे माजरा चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज जो आपकी कॉल्स आ रही हैं वो इतनी भरपूर आ रही हैं कि उसमें मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यकीन कीजिए, ये जो एक शो करना है ना, ये जो एक रेडियो का शो करना है, ये ऐसा है कि जैसे आप जहाज चला रहे हैं। मतलब आपको हर चीज़ के ऊपर, आप इतने सारे बटन्स आपके सामने होते हैं, आपको हर बटन के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि अच्छा कोई बटन आगे पीछे ना हो जाए, किसी टाइमिंग गलत ना हो जाए। तो बहरहाल आपकी कॉल्स का शुक्रिया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी कॉल्स सबकी जो हैं वो मैं रिसीव करूंगा और आपसे बात भी होगी। अगर आपको दोबारा डायल करना पड़ रहा है तो उसके लिए माजरत, और अगर आप दोबारा डायल करते करते नहीं थक रहे तो आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

सियाने कहते हैं कि आपकी जो नेटवर्थ होती है, किसी भी इंसान की जो नेटवर्थ होती है, वो अक्सर देखा जाता है ना कि किसी की क्या वर्थ है, वर्थ से मुराद जो नेटवर्थ है कि उसके पास पैसे कितने हैं, वो कितना अमीर है, उसका बैंक बैलेंस क्या है। सियाने कहते हैं कि किसी भी इंसान का जो बैंक बैलेंस होता है, जो नेटवर्थ जिसकी होती है, वो उसका नेटवर्क होता है। जिस तरह आपका नेटवर्क सनराइज रेडियो है, या आपका फैमिली नेटवर्क है, और जो हमारा नेटवर्क है वो आप हैं। हमारा तो बैंक बैलेंस यही है, हमारा जो ख़जाना है वो आपकी मोहब्बतें हैं, और जो आपका ख़जाना है वो सनराइज रेडियो है, जो आप डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू सुनते हैं, और जिसमें हमारी जो मोबाइल ऐप है वो शामिल है, और इस ऐप के थ्रू आप हमें डायरेक्ट सुन सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई कह लीजिए कि थर्ड मैन या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ये आपका और हमारा डायरेक्ट राबते का एक सोर्स है, जिसके थ्रू आप से हम कलाम होते हैं और हम आपसे हम कलाम होते हैं। हम कलाम होने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से के थ्रू हमसे रबता कर सकते हैं, और sunriseradio.fm हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको हमारे सोशल्स के तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

बहुत से दिल जले हमें सुन रहे हैं और उन दिल जलों की ये फरमाइश है, ये तमन्ना है, ये चाहत है कि एक कोई दुखी किस्म की शायरी प्रोग्राम में शामिल की जाए। लेकिन एक बात मैं हमेशा से इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जब इंसान कोई दुखी होता है ना, उसको दुखी शायरी, दुखी गाने, दुखी बातें और दुख पहुँचाने वाले जो लोग हैं उनसे मजीद थोड़ा सा किनारा कशी कर लेनी चाहिए। दुखी शायरी या दुखी गाने आप इसी सूरत में सुनना चाहते हैं कि आप दुखी हैं या किसी की याद आपको सता रही है। तो मैं आपसे माजरा चाहता हूं, अगर आप ऑलरेडी दुखी हैं तो मैं आपको कोई दुखी शायरी सुना के, दुखी गाने सुनाकर मजीद दुखी नहीं करना चाहता। तो बेहतर यह है कि अगर आप ने दुख फोलने ही हैं, अपने खरोलने ही हैं, या उन दुखों को आपने दोबारा से जिंदा करना है या उनको ताज़ा करना है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको उसका एक बेहतरीन किस्म का उपाय बताऊंगा कि आपको जो दुख लाहक हैं उनसे आप छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर तो आपको पता ही है, 01274306666। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

अच्छा जी, कहते हैं कि मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती, मोहब्बत की सिर्फ एक जुबान होती है, और वो जुबान होती है कि किसी भी जुबान में अगर आप मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसको प्यार से बोला जाए तो वही मोहब्बत की जुबान होती है। मोहब्बत की जुबान वही होती है जो आपकी मादरी जुबान होती है। अगर आप अपनी मादरी जुबान से प्यार नहीं करते तो आप प्यार कैसे कर सकते हैं? तो आपकी मादरी जुबान चाहे पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, उसके अलावा पहाड़ी है, पोटोहारी है, या पश्तो है, या किसी भी किस्म की आपकी ज़ुबान है, अगर आप वो ज़ुबान बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप शायद मोहब्बत करने में भी किसी हद तक कंफर्टेबल ना हों। मोहब्बत तो हमेशा अपनी ही ज़ुबान में उसका मज़ा आता है, और चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो लड़ाई हो, जब इंसान लड़ाई भी करता है, गुस्से की हालत में भी होता है, तो वो अपनी मादरी ज़ुबान में ही लड़ाई करता है, तो उसको अजीब सी तस्कीन मिलती है कि शायद ये सही तरीका है लड़ाई करने का। मतलब हम लोग जो अपने अपने वतनों से यहाँ पर आकर आबाद हैं, अपनी अपनी ज़ुबानें बोलते हैं, जब हम लड़ाई करने की कह लीजिए स्टेज पर आते हैं, किसी से लड़ाई करना चाहते हैं या आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती जब तक हम अपनी ज़ुबान में उनसे आर्ग्यूमेंट ना कर लें, या उनसे हम लड़ाई ना कर लें, उनसे गिला ना कर लें। ये जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो बोलते हैं, वो अपनी ज़ुबान में लड़ाई करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। बहरहाल ज़ुबानें सारी अच्छी हैं, और जो भी ज़ुबान मोहब्बत और प्यार से बोली जाए वो सारी अच्छी ज़ुबानें हैं, सारी हमारी ज़ुबानें हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपने किस ज़ुबान से हमसे बात करनी है, आप कोई भी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उसमें मोहब्बत ज़रूर शामिल कीजिएगा। स्टूडियो का नंबर है 01274306666। आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज़ रेडियो।

अच्छा जी, वक्त की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात ये होती है कि वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो गुजर ही जाता है। हालांकि वक्त की रफ्तार एक ही होती है, जब आप खुश होते हैं तो बहुत जल्दी गुजर जाता है, लेकिन अगर आप खुश नहीं होते हैं, अगर आप परेशान हैं, बेजार हैं, या आपको किसी चीज़ में नुकसान पहुंच चुका है, तो वही वक्त आपके लिए जो एक सेकंड है वो एक घंटा बन जाता है, एक घंटा एक दिन बन जाता है। तो इसी तरह जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हर लम्हा, हर पल, हर सेकंड आपके ऊपर एक पहाड़ जैसा बोझ लेकर आता है। आपको लगता है कि ये वक्त गुजर क्यों नहीं रहा। अभी हमारे शो को भी देखें, आपके साथ साथ चलते चलते हमारा वक्त कितना अच्छा और खुशगवार गुजर रहा है कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। वक्त भी गुजर जाएगा, आप भी जहां पर जा रहे हैं, जहां जाना चाहते हैं, आप भी गुजरते गुजरते वहां पहुंच जाएंगे, और हम भी आपसे बात करते करते इस शो को अलविदा कहकर फिर अगले शो की इजाज़त लेकर आपसे हम अलविदा हो जाएंगे, आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तो वक्त है, अभी आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आपने रहना है हमारे साथ साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हैं आपके साथ साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बरतानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.
3: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।

अच्छा जी, आपकी कॉल्स का बेहद शुक्रिया। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं शायद जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाता हूं। तो भाई आई विश के मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता तो मैं आपको दिखा देता कि स्टूडियो के अंदर जो ये जो लाइंस फ्लैश कर रही हैं टम टम टम टिका टिका टिका टम टम टम, ये मैं आपको दिखा सकता लाइव। लेकिन वो भी दिखा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन देखिए, चूँकि कॉल्स की जो नंबर ऑफ़ कॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए और जिससे भी बात होती है वो भरपूर बात हो रही होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर बात हो, क्योंकि हम भी यहाँ हैं और आप भी यहाँ हैं। हम ना ही हमारा ये आखिरी शो है और ना ही आपकी आखिरी कॉल है। हम बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे और म्यूज़िक भी सुनेंगे और इसके साथ साथ मशहूरियाँ भी सुनेंगे। देखिए, ये जो मशहूरियाँ होती हैं ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। गाने तो सारे लोग एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं, लेकिन मैं आप सबको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको आज मशहूरियाँ डेडिकेट करूंगा। जितने भी एड्स हैं ये मैं आपको डेडिकेट करूंगा। मैं कहूंगा ज़रा इनको गौर से सुने और सुने कि ये क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आप की कॉल नहीं मिल रही तो मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। वो मशवरा मुफ्त है और मुफ्त मशवरा देने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे तो आप मुझे नहीं देंगे और ना ही किसी और किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक छोटा सा काम करेंगे कि मैं आपको थोड़ी देर बाद वो मशवरा बताऊंगा, और मशवरा बहुत फ्री में है, ये जहन में रखिएगा। उसका कोई नुस्खा नहीं है, उसका मतलब कोई उसकी कीमत नहीं है। वो मशवरा मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं 01274306666 पर। अगर आपकी इस नंबर पर कॉल नहीं मिल रही तो मेरे पास एक बहुत मुफीद मशवरा है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड।

तो लीजिए हम आपको दिए देते हैं मशवरा, और वो मशवरा ये है कि अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही फॉर सम रीज़न, या मैं उठा नहीं पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न, वो रीज़न यही है कि कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और बंदा मैं कल्ला ही हूँ, इंसान मैं एक हूँ, और वो कहते हैं कि एक जिंदली तो दो हज़ारा, बंदा मैं अकेला हूँ और कॉल्स आप लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैं अकेला हूँ आपकी कॉल्स लेने वाला और मैं वन बाय वन ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे बात हो पाए। लेकिन अगर आपसे ये मेरी बात नहीं हो पा रही तो आप एक काम कीजिएगा, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाइएगा। मतलब आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप sunriseradio.fm पर जाइए और उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इनमें से किसी एक के थ्रू भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट यूट्यूब, लेकिन आप बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन पर आप हमें डीएम कर सकते हैं और वहां पर भी आपसे हमारी बात हो पाएगी। तो ये एक बहुत मुफीद किस्म का मशवरा मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो एक तो मशवरा भी मुफ्त है और दूसरा ये काम भी मुफ्त है। मतलब इसमें आपको कॉल करने को पैसे नहीं लगेंगे, वैसे तो आजकल इतने लगते नहीं हैं, फ्री नेटवर्क है, मतलब कहीं भी आप कहीं भी लोकल नेटवर्क पर हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही फ्री है। आपने बैठकर मैसेज करना है और हमने पढ़ लेना है ऑन एयर आपका मैसेज, और आपके दिल की जो भड़ास है, भड़ास से मुराद है कि जो आपकी चाहत है, वो जो डुल डुल के आ रही है हमारे

0: पास उसको हमने समेट कर अपने जो आपके अल्फाज हैं उनको आवाज़ देनी है और वापस आप तक पहुंचाने हैं और आपके चाहने वालों तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। अगर आपको अभी तक मेरा नाम पता नहीं चला तो मैं आपको वो भी थोड़ी देर में बता देता हूं। स्टे ट्यून्ड।
1: आदिबी, आदिबी।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुआ के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
1: नफसेन जायकातुल मौत
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 दैट्स ब्रेडफोर्ड 7230300

राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पर हुआ चाहता है प्रोग्राम का इख्तिताम। ओके, यहां पर मुलाकात जो हमारी पिछले 3 घंटे से जारी थी वो अब उसका कह लीजिए कि इख्तिताम हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अंटिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखा कीजिए, अपने साथ साथ अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी, अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपने माँ बाप का। क्योंकि माँ बाप दुनिया में इंसान की 2 आंखों की तरह होते हैं। अगर एक आंख देखना बंद कर दे तो दूसरी आंख उसका काम देती है, लेकिन अगर दोनों आंखें देखना बंद कर दें तो इंसान की जिंदगी एक अंधेरा बन जाती है। उसको दिखाई कुछ नहीं देता, उसको सुनाई भी कुछ नहीं देता। अपनी आंखों की हिफाजत किया कीजिए, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों, रफका और अपने अजीजों अकारब का ख्याल रखा कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।

0: sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: Looking for a quality home to rent?
6: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
5: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
7: इंग्लैंड में हम पानी को उससे ज्यादा तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी तेजी से कुदरत उसे पूरा कर सकती है। अगर कुछ तब्दीली ना हुई तो 2055 तक हम रोजाना 5 बिलियन लीटर से ज्यादा पानी की कमी का सामना कर सकते हैं और वेल्स में ज्यादा बरसात वाली सर्दियां और ज्यादा खुश्क गर्मियां पानी के जखीरे पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि हम रोजाना तकरीबन 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत इससे काफी ज्यादा लगभग 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ आसान तब्दीलियां करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। छोटी शावर लें, लीक होने वाले नल या टॉयलेट को ठीक करवाएं। बर्तन धोने के लिए नल खुला रखने की बजाय एक बाउल का इस्तेमाल करें। डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड का इस्तेमाल करें। पानी कीमती है, इसे महफूज रखने के लिए हमें कम इस्तेमाल करना होगा। लेट्स सेव वाटर को सर्च करें या letssavewater.com पर जाकर रोजाना पानी बचाने के आसान तरीके जान लें।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274 733 732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 दास ब्रैडफोर्ड 7230300

0: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
1: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
0: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
1: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रैडफर्ड।
0: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01-274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
2: तेरी
3: गलियां घुमी ते पैरां जुत्तियां कसी गईयां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो, ते तुसा चाचे कोल जाओ ना। चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले। जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी, नक्कै नतीला सिर्फ 2 पौंड ना। कानस लाने ना, 1 पौंड छापां ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। ते जे तुसा पुराना सुना बेचना है ते बहुत चंगे रेटा पर देने ने। एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता। चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274 4 8 9 3 5।

चगरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडदुम चगडदुम चिकिचकचो।

0: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
1: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
0: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
1: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
0: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
2: इंग्लैंड दे विच असीं पानी दी वरतों जिन्नी तेजी नाल कर रहे हां, कुदरत इस नूं उन्नी तेजी नाल नहीं पार सकती। जे कुछ ना बदलिया तां 2055 तक सानूं हर रोज 5 बिलियन लीटर तों वध पानी दी कमी दा सामना करना पै सकदा है। सर्दियां दे मुकाबले गर्मियां च पानी दी सप्लाई दा ज्यादा दबाव हुंदा है, यानी पानी दी वरतों वध हुंदी है। साडे विचों ज्यादातर सोचते ने कि असीं दिन विच लगभग 30 लीटर पानी वरतदे आं, पर असल च असीं 140 लीटर दे नेड़े आं। आओ कुछ साधारण तब्दीलियां करिए ते पानी दे बचाव दे विच मदद करिए। शावर विच घट समां लगाओ। लीक कर रहियां टूटियां या टॉयलेट नूं तुरंत ठीक करवाओ। लगातार चल रही टूटी दी बजाए भांडे धोण वाले बाउल दी वरतों करो अते अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन विच ईको मोड दी वरतों करो। पानी अनमोल है, इस नूं बचाउण दे लई सानूं सारिआं नूं घट पानी वरतण दी लोड़ है। हर रोज पानी बचाउण दे आसान तरीके लई लेट्स सेव वाटर खोजो या letssavewater.com ते विजिट करो।
3: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: hottest sounds. Let's go.
1: On Sunrise Radio.
2: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
3: Salam and namaste. Salam and namaste.
4: जिससे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा
5: हुआ
4: है।
6: हम शरीफ क्या हुए?
5: मैं वापस
6: पूरी दुनिया ही बदमाश।
5: देखो मैं हूँ कहाँ?
6: आ रहा

0: अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, खुशामदीद, वेलकम टू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। आपका होस्ट दोस्त यहाँ पे हाजिर है, मेरा नाम परवेज़ है, आई एम हियर टिल 11 को पीरे शाम, और आप सबके नाम रंगे महफिल का प्रोग्राम है 01274306 पे। नो फॉरगेटिंग यू आर लिसनिंग टू सनराइज रेडियो 100.6 एफएम क्रॉस वेक योक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद आई विल प्ले फॉर यू द हिट ऑफ द आवर, एंड यस डेफिनेटली हिट ऑफ द आवर आपके लिए पेश करूंगा थोड़ी देर के बाद, एंड वी विल डू अ टाइम चेक एज वेल। एंड फिलहाल यहां पे हमने करना है छोटी सी ब्रेक करेंगे, कीप इट लॉक्ड।
1: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
2: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है, मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
1: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
2: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
1: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू सनराइज म्यूजिक, और यहाँ पे हमने पेश करना है हिट ऑफ द आवर। आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून। और अली राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें याद कर रहे हैं। वाजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं। गिदन भाई हैं, हमारे पापी जन सुमित्रा जी हैं, वेलकम जी एन खुशामदी कंगा सिमी जी हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। यहाँ पे हमने पेश करना है हिट ऑफ द आवर। आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल ट्यून, वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून। एंजॉय
3: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: Right, that was a wonderful tune और आपने enjoy किया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी दोस्तों, जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त बाबे अजीज हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। और दिल भाग भाग हो गया, दिल गार्डन गार्डन गया। अली राय साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की है और बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने दिल जीत लिया मेरा। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। और आज क्या कहेंगे, जितनी भी मैं आपकी तारीफ करूँ कम है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। दैट वाज हिट ऑफ द आवर और हमें अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, time in the studio is 20 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in, keep it locked on with the power is gone. और यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे permission देनी है। You're listening to Sunrise Radio 100.6 FM on 103.2 FM across West Yorkshire. Not forgetting DAB, plus Bradford, Keighley, Ilkley, Skipton में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे हमने गीत पेश करना है और यहाँ पे डॉक्टर साहब आपके लिए होगा, अली राय साहब आपके लिए होगा, वाजिद भाई हैं आपके लिए होगा। मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। बहुत खूबसूरत गीत है, वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून है। और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई चौधरी फरियाज साहब, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान से। उनसे भी साथ मुलाकात होगी हवा के दोष में। और यहाँ पे फिलहाल उनके लिए गीत होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि वो इंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और वाजिद भाई आपके लिए हम दुआ गो हैं और आपके दोस्तों के लिए गीत होगा थोड़ी देर के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आप आए और बाहर आ गई है। और ये वो खूबसूरत गीत है जो आपने इंजॉय करना है। कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो।

0: Ryan, that was a wonderful tune, और आपने enjoy किया. And if you are driving, drive with a cab. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. And you are driving, और हमें अच्छा लग रहा है कि अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आपने भी हमें याद कर रहे हैं. आप drive करें, drive very very very carefully. शिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आप ही हमारा साथ दे रहे हैं. आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया. उजला अफजाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया. और थोड़ी देर के बाद आपके लिए भी गीत होगा, आपकी फैमिली के लिए गीत होगा. बहुत अच्छा लगा कि आप हमें याद कर रहे हैं और आप हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. वाजिब भाई, जब भी आपको मौका मिले आप मुझे दोबारा फ़ोन कर सकते हैं. आपकी कॉल मिस हो चुकी है और हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक करेंगे. ब्रेक के फौरन बाद आई विल मेंशन योर कॉल. और जो फ़ोन कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और हमारे चौधरी फरियाज साहब हैं, आप भी हमें थोड़ी देर के बाद फ़ोन करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी भी कॉल मिस हो चुकी है और जब भी आपको मौका मिले दोबारा फ़ोन कर लेना. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पे हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे और ब्रेक के फौरन बाद खूबसूरत गीत आने वाला है. आप दोस्तों के ऑल द खामोश लिसनर, नो फॉरगेट नॉलेज, चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर. वाजिद भाई आपने घबराना नहीं, ठीक है. हम आपके लिए दुआ गो हैं, हमेशा ही आपके लिए दुआ करते हैं और आज भी हमने दुआ करेंगे. और सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी दोस्त भाभी, उनके लिए दुआ करें और हमारा साथ दे रहे हैं. हमारे मोहतरम में शिवेब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आप हमारा साथ दे रहे हैं. और ख्वाजा मोहम्मद अकरम साहब, ख्वाजा मोहम्मद अकरम साहब, आप ही हमारा साथ देने. आपके लिए पूरा प्रोग्राम होगा आपके लिए और आप हमारा साथ देने. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और थोड़ी देर के बाद आपके लिए भी गीत होगा. आपने कहीं भी जाना नहीं. और ये यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे. कीप इट लॉक्ड.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे. पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ.
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है. शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था.
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स. तेरी
3: गलियां कुमी, ते पैरें ये जुतियां ही कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया.
4: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना.
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए. सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना, 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं. ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है. ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने.
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935.
0: Sunrise Radio. Right, welcome back, listeners. और यहाँ भी आने वाला गीत में पेश करने जा रहा हूँ वाजिद भाई आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए. और मुझे उम्मीद यकीन है कि आप इंजॉय करेंगे. और आपने सलाम पेश किया है सब सुनने वालों के लिए. और स्पेशली आपने सलाम पेश किया गिदन भाई और स्मिता जी को और उनकी पूरी फैमिली को और जो उनकी पूरी टीम है उनको आपने सलाम पेश किया है. और अतिका साहब को आपने सलाम पेश किया है और गजला साहब को आपको सलाम पेश कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और वाजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और राना नवीद साहब को सलाम पेश किया. शकील साहब को आपने सलाम पेश कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. सब सुनने वालों के लिए सलाम पेश कर रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया. आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा और यही गीत मैं पेश करूंगा. अरूबी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आप हमारे साथ हैं और ये वो गीत मैं पेश करने जाना हूं आपके लिए. फरजाना जी ये गीत फिलहाल आपके लिए होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि इस गीत को आप खूबसूरत अंदाज से ये आपके लिए गीत है और मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. बहुत खूबसूरत गीत है और हमेशा आप इसकी फरमाइश करती हैं और आज हमने आपके लिए सोचा क्यों ना आपके लिए पेश करूं. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और अली भाई, अली राय साहब, ये गीत आपके लिए होगा. मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप इस गीत को एंजॉय करेंगे. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और कहते ना दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया. और हमारे मोहतरम भाई हैं, भाई चौधरी रुखसार भाई हैं, हमारे मीठा जी हैं और वो भी हमारा साथ दे रहे हैं. उनकी पूरी फैमिली के लिए होगा गीत होगा. मुझे उम्मीद और यकीन कि वो भी इंजॉय करेंगे और उनके दोस्तों के नाम भी होगा. और ये खूबसूरत गीत है जो आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप फर्स्ट क्लास होंगे, ठीक ठाक होंगे और हम आपके लिए भी दुआ करूँ और ये खूबसूरत गीत आपके लिए भी. इंजॉय द ट्रैक.

वाओ व्हाट अमेजिंग ट्यून आपने सुने और पसंद किया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू वेरी मच, हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मूविंग ऑन टू अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक और ये गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ और ये गीत होगा डेफिनेटली हमारे चौधरी रखार भाई आपके लिए होगा और आपके दोस्तों के नाम होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे। जाफर भाई

बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं। अतिका साहिबा हैं ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान से हैं, ये गीत आपके लिए, मुझे उम्मीद है यकीन के इस गीत को आप इंजॉय करेंगे, बहुत खूबसूरत गीत है ये आपके लिए और आपकी जो सखी सहेलियाँ हैं उनके लिए गीत होगा, मुझे उम्मीद है यकीन के इस गीत को आप इंजॉय करेंगे, बहुत नायाब गीत है। नदीम मंसूर साहब ये गीत आपके लिए भी गा, इंजॉय द ट्रैक।

0: Right, that was a wonderful tune, one of my favorite tune, और आपने enjoy कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने दोबारा फ़ोन किया और अफजाई की है, दुआएं दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम पसंद करने का बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत शुक्रिया कि आप गानों को पसंद कर रहे हैं, यू ड्राइविंग वेरी वेरी केयरफुली, और ये भी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. एनी वे यहाँ पर हमने करना है टाइम चेक, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, time in the studio is 46 minutes past the 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on and keep it locked on with the power is Khan. Yahan pe choti si nanni mani si break hogi, break foran baad I'm going to play it for you, a flashback hoga, or before that I'm going to be introducing you a bit of information about Sunrise Radio. The Sunrise Radio Listener Choice Award 2026 are coming soon, celebrating the businesses, organizations, venues, artists you love. Voting will be exclusive to listeners club members, so join free now at sunrise.radio. keep listening for more detail, and that is all the beauty of Sunrise Radio. Aur yahan pe humne chote se break karenge, a break foran baad I'm going to play it for you, a flashback hoga, aur ye geet aap sab doston ke liye hoga, aur especially Wajid bhai aapke liye aur aapki puri team ke liye hoga. Bahut bahut shukriya aapka bhi, Chaudhary Khad bhai aapke liye bhi, aur hamare Chaudhary Firyaz sahab aapki aur aapki puri team ke liye hoga. मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप इंजॉय करेंगे. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. अली राज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमें याद किया, और शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और राजा शुएब भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और रेखा जी हैं बहुत बहुत शुक्रिया, सिमी जी हैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो बाकी ये टीम है आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और थोड़ी देर के बाद सबका नाम लूँगा, और बहुत बहुत शुक्रिया. और यहाँ पर हमने करना है छोटी सी ब्रेक.
1: This October, Bollywood meets Bhangra in Manchester. In-house Productions presents Bollywood meets Bhangra 4, featuring Dutch sensation Jenna Jia performing live. Enjoy Bollywood, Bhangra, Hip Hop, Afro and R&B, plus DJs, dancers and dhol players. Friday the 23rd of October, from 9 PM till late, at Area, 50 Sackville Street, Manchester. Entry is free. Photo ID required. For information, call 0775-3363-926.

Right, that was a wonderful tune. और आपने enjoy किया, बहुत शुक्रिया आपका भी. और खुरम भाई बहुत शुक्रिया, you drive in and drive with carefully, and आपने enjoy करना है और next गाना आपके लिए होगा. और thank you very much, हम आपका इंतजार करेंगे थोड़ी देर के बाद. बहुत शुक्रिया आपका भी. और ये आने वाला गीत आपके लिए पेश करूँगा, आपकी पूरी फैमिली के लिए होगा, दोस्तों के लिए होगा, जो भी आपके दोस्त बाब अजीज़ हैं उनके गीत होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे. बहुत शुक्रिया आपका भी. नदीम मंसूर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, ये गीत आपके लिए. चौधरी फरियाज साहब ये आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए होगा, जो आपकी टीम है, ज़बरदस्त टीम है. और ये गीत आप दोस्तों के लिए होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि इस गीत को आप इन्जॉय करेंगे. बड़ा ही नायाब गीत है और बड़ा ही कमाल का गीत है और कमाल कमाल हो रही है. और ये वो गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ. ऑन दिस ट्रैक विल टेक मी टू द 9 o'clock न्यूज़ एंड देन आफ्टर दैट वी विल गो ऑन टू द बैंक. और बहुत शुक्रिया. और जिनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है वो दोबारा फ़ोन कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया. आई एम सॉरी बाबा, एंड देयर इज़ अ टेक्निकल इशू इन द स्टूडियो और थोड़ा सा मसला हो रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी हल करने की. और जिनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है दोबारा मुझे फ़ोन करेंगे. I will take you on air. बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच फोन करने का, उजराफजाई करने का, दुआओं का बहुत शुक्रिया. ये गीत आप दोस्तों के लिए. एंजॉय द ट्रैक.

0: Right, welcome back here, listening. You're listening to Sunrise Radio on 100.6 FM, 103.2 FM across the West Yorkshire. And not forgetting in Manchester, East Lancashire and DAB Plus, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Accrington, or Middle Keene, and not forgetting West London. And you also welcome Jane Khush Ahmadi, this is Bismi Lakinga. And you also, Robin Sir, you are our program in New York and America. Program suna ja raha hai. Bahut shukriya. Welcome Jane Khush Ahmadi. And today, हमारे मोहतरम हमारे भाई चौधरी उठार साहब पार्टी हो रही है. वाह वाह वाह वाह, क्या कहने जी, क्या कहने. और यहाँ पे महक आ रही है, खुशबू आ रही है माशाल्लाह. और बहुत अच्छा लगा आपने भी हमें याद करें, बहुत बहुत शुक्रिया. और यहाँ पे हमने पेश करना है हिट ऑफ द आवर, और हिट ऑफ द आवर के बाद यहाँ पर सिलसिला शुरू होगा लाइव कॉल का. और जिनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है, आप दोबारा फ़ोन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा थोड़ी देर के बाद. फिलहाल यहाँ पे मेरा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी. और लाइन बिजी है, और थोड़ी देर के बाद आप दोबारा फ़ोन करेंगे. I will take you on air. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों, जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्तों बाबा अजीज हैं. और यहाँ पे हमने पेश करना है हिट ऑफ द आवर. Enjoy.
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: Right, that was a wonderful tune, and that was a hit of the hour. और यहाँ पे हमने करना है time check.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, ladies and gentlemen, boys and girls, according to the current clock, it's 12 minutes past the 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep a lockdown with the Pavi Khan. यहाँ पे छोटे से ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे धमाका होगा और कमाल कमाल हो गया क्योंकि हमारे स्टार कॉलर्स हैं और बहुत शुक्रिया साहब दोस्तों का. यहाँ पे छोटी सी नन्ही मिनट से ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ दे रहे हैं और उनके लिए आपके लिए सरप्राइज है. वो कौन है और कहाँ से?
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया.
4: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना.
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है. सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं. ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने.
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935.
0: राइट, वेलकम बैक लिसनर. योर लिसनर सुंदर रेडियो और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है. और वेलकम कहेंगे, जी कहेंगे, खुश आमदी कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे और जिनका इंतज़ार था वो आ गए हैं और छा गए हैं.

0: राइट वेलकम बैक लिसनिंग योर लिसनिंग सनराइज और यहाँ पे मेरा साथ है हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दो जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है चौधरी फरियाज साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: जी
0: बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा से ठीक है आपकी
1: बस दुआ वक्त गुजरना
0: माशाल्लाह माशाल्लाह साड़ी दुआ में शाम के साथ है
1: मेहरबानी शुक्रिया
0: बल्कि तुसा सब वाला बहुत-बहुत शुक्रिया नो प्रॉब्लम सर वेलकम टू वेलकम कीता है क्या हाल है
1: जी जी एक नवाज़िश है जनाब तुसा सारे इतने सनर मोहब्बत बांटने हो असें खलूस देने हो और सलाम सलाई करने हो
0: जी
1: मैं तुसा सब वाला शुक्रगुजार हां सलाम दुआ करा
0: जी बिस्मिल्लाह करें
1: इंशाल्लाह कुछ शायरी
0: तुसा जी जी
1: मैं फिर पेश करता
0: हूं जी बिस्मिल्लाह
1: सबसे पहले अतीका बाजी ने नशीन जी ने सिमी जी ने अम्मा जी ने गुजरा बाजी ने और शाहपरी जी ने जुलेखा जी ने सारा जी ने पापी साहिब ने गिद्दल भाई ने सोनम जी ने फरजाना जी ने सहमा जी ने सोनिया जी ने वफा जी ने सबा ने मेरा बहुत बहुत सलाम सबा बहुत बहुत शुक्रिया नशीन जी तुम्हारी पूरी टीम का बेहद शुक्रिया और मोहतरम अमर भाई ने महबूब लाई साहब ने मुजस्सर साहब ने चौधरी मीर सैन चक्की अली ने शकील साहब ने इराज साहब ने वाजिद भाई ने अजूब चौहान साहब ने जावेद मीर भाई ने अब्दुल किशोर भाई उम्मीद राणा साहब ने जनाब तारक बार साहब ने चौधरी मुजफ्फर साहब ने चौधरी आसफ यासर साहब ने और जनाब डॉक्टर चौधरी मालिक साहब ने इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा मेरी हौसला अफजाई करने ने चौधरी रुखसार साहब ने एम खान साहब ने नदीम मंसूर साहब ने राजा वकाल साहब ने राजा दुलकर ने और जफर अली हीरो साहब ने महमूद साहब ने राजा शुएब साहब ने और जनाब तुसा ने मोहतरम अली राय साहब ने और भाई अनिल जेल बिच और भी जितने एफ रहमान साहब और अपने मनीर सैन अली शख्स जितने भी संगीत साथी ने सब बहुत बहुत सलाम
0: वालेकुम सलाम
1: पहला शेर तुसा ने शेर ने एक मौजी साहब ने उन्होंने बड़ा
0: जी जी अरशाद
1: मैं अपनी नजर करता
0: जी
1: बिस्मिल्लाह करा लिखने ने के जागते जनते फूल लाए
0: आहा क्या कहने
1: जगते जनते फूल लाए देख के सोना हुसन कमाल मौला
0: वाह
1: फिर हुई जमाइश के विच करबल रोंदा दिल मेरा सुन के आल मौला
0: आहा
1: रही सबर दी हद रही सबर हुसैन दी हद कोई ना
0: वाह
1: मिली नहीं कोई ऐसी मिसाल मौला अर्ज आज एक मौजी मस्कीन करदा रखी जन्नत दे वारसा नाल मौला
0: वाह जी वाह माशाल्लाह क्या कहने
1: बिस्मिल्लाह करा एक और लिखो जो खूबसूरत शेर
0: जी
1: के मेरे मरण वेले मेरे या मौला
0: वाह
1: मेरे मरण वेले मेरे या मौला नेरे दूर हर बशर नु खबर होवे रबा बंद होवन कलमा तोयब पर के कनिया टेंदियां ते टेंदियां ते छाया अबर होवे
0: वाह
1: कदे रूह मेरी इजराइल जिसले सख्ती नजा दी मोल ना जबर होवे कलमा पढ़दी होवे अखीर तलखी नाले शहर मदीने विच मेरी कब्र होवे
0: हाय हाय हाय क्या कहने
1: मजाज ने रंग जनाब आसम खलीम खलील साहब ना पहला शेर
0: जी जी
1: लिखने ने के जिंदगी है नियामत इनकार कुफर है
0: हा हा क्या कहने
1: जिंदगी है नियामत इनकार कुफर है जिंदगी दे के दिती है सजा मालक
0: वाह
1: उधर उछण दिता है इधर तड़प दिती है उधर उछण दिता है इधर तड़प दिती है मैंने दस की मेरी खता मालक
0: वाह
1: इधर चाहते बेपरवाही उधर समझ आई ना तेरी रजा मालक
0: वाह
1: ऐ भी जिंदगी आसम कोई जिंदगी है बस बस है किस्सा मका मालक
0: वाह वाह वाह वाह क्या कहने
1: क्या फिर जान दे हाथ उठे अज तक रे उठे
0: वाह
1: जान दे हाथ उठे अज तक रे उठे किधर जांदी है मेरी गवाह मालक
0: वाह
1: बंदा हो के मंगना काम मेरा हो के मती ना किसी आता मालक
0: वाह जी वाह क्या कहने
1: तेरे कोलो ना तेरी खुदाई मंगी मंगिया एक ना कीती खता मालक या फिर कह नहीं तेरा खलील बंदा या फिर कह नहीं तेरा खलील बंदा किते जा मंगा दस जा मालक
0: वाह जी वाह क्या कहने
1: क्या फिर मैंने दिल दिता ही उसने की दिता ही मैंने दिल दिता ही उसने की दिता ही है दिल है पर मिसल संग मालक
0: वाह
1: जिंदगी तू बख्शे तेरा कम लेना मेरा जीना क्यों कीता उस तंग मालक
0: वाह जी वाह क्या कहने
1: मैंने दर्द दिता ही वो बे दर्द किया ही मैंने दर्द दिता ही वो बे दर्द किया ही बेपरवाही तेरी किया दंग मालक तुझ वाल वेख आसम सबर कर लेंदा बेनियाजी तेरे रंग मालक
0: वाह वाह वाह क्या कहने बहुत खूब
1: आखने के बेपरवाही मालका जात तेरी बेपरवाही मालका जात तेरी कोई मरीज को कर तबीब देना है क्या भक्ति की रवे कोई उम्र सारी कर किसे ने उच्चे नसीब देना है
0: वाह वाह चौधरी साहब वाह
1: मेरे किसे की मंजिल ना गौर तोड़ी मेरे किसे की मंजिल ना गौर तोड़ी करके किसे ने मंजिल करीब देना है करे मिर्जिया प्यार जे बेकार कोई करे मिर्जिया प्यार जे बेकार कोई किधरे शामर कर जालम रकीब देना है
0: वाह वाह क्या कहने
1: अद कोई नी तेरी कार साजा उते पानी दे फर्क बचान वाले सूरज चन सितारे लो आज कुछ इतनी दुनिया अजीम बनान वाले सदा पता ना हुक्म बगैर तेरे कार साज मालिक दो जहान वाले टुटा दिल नसार ना जोड़ सके एक टुटा दिल नसार ना जोड़ सके एडा वड्डा निजाम चलान वाले
0: बहुत आला बहुत आला वाह
1: आखिरी शेर आ गया बहुत सोचा पर क्या तोलिया मैं बहुत सोचा पर क्या तोलिया मैं गल समझ दे विच ना आई रब्बा जिवें बेपरवाह है तू आप जिवें बेपरवाह है तू आप बेपरवाह है तेरी खुदाई रब्बा
0: वाह जी वाह क्या कहने
1: मतलब वास्ते यारा दिया यारियां ने मतलब वास्ते यारा दिया यारियां ने संगत यारी दी खूब अजमाई रब्बा जिस दे नाल भी किता है प्यार अदों जिस दे नाल भी किता है प्यार सिद्धों गो सह किती है बेवफाई रब्बा
0: वाह वाह वाह वाह
1: कदम कदम से ठोकरा लख मिलियां आरिक मोर से मिली है रसवाई रब्बा
0: वाह
1: देवा किस्मत नसीब नु दोष कीवें देवा किस्मत नसीब नु दोष कीवें क्यों जे किस्मत तू आप बनाई रब्बा दिता दुख कोई नहीं तेरे बंदियां नू दिता दुख कोई नहीं तेरे बंदियां नू देसन मेरे रकीब गवाई रब्बा जे मैं वेख के अपने नसीब रवा जे मैं वेख के अपने नसीब रवा दुनिया समझदी है मैनू सदाई रब्बा सदके नबी दे मैं ते आसान कर दे सदके नबी दे मैं ते आसान कर दे किधरे मुख जाए मेरी तैनाई रब्बा कासम एक सवाल बस ऐ मेरा कासम एक सवाल बस ऐ मेरा पर मेनू मेल दे विछड़िया भाई रब्बा
0: वाह जी वाह कमाल कर देता ने कमाल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जितनी भी तारीफ करना कम है और बड़ा ही अच्छा लगा और हमारे साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और जिन्होंने पसंद किया आपकी शायरी को बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप नक्शावर आएंगे और ये सिमी जी हैं जिन्होंने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम भेजा है और बड़ा ही अच्छा लगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आप आएँ और नक्शावर में हम इंतज़ार करेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का और जितनी भी तारीफ करूँ कम है
1: शुक्रिया
0: सारे बड़ी मेहरबानी खाल शुक्रिया आपका कि आप आए बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें थोड़ी देर के बाद हम दोबारा मुलाकात करेंगे हवा के दोष में बहुत बहुत शुक्रिया थे हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त जितनी इनकी मैं तारीफ करना कम है बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त हैं और जितनी भी इनकी मैं तारीफ करना कम है अली राय साहब हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: हजूर कैसी तबीयत आपकी
2: अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह ताला दा बड़ा एहसान बहुत
0: साड़ी दुआ हमेशा आपके साथ है मेरे भाई आपके साथ हमेशा ही और अच्छी गुफ्तगू करते हो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह आपके साथ है पिछले आवर में बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह जी
2: सर जी थोड़ियां दुआवां नाल अल्लाह ने बारह लाइया
0: माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कहने वाह जी
2: चलो जी सारे टाइम जाया नहीं करते सारे मेरी तरफ जी बहुत बहुत सलाम
0: करके
2: चौधरी फरियाद साहब
0: जी जी माशाल्लाह
2: मेरा नाम लिया जी ते जी सलाम उन्होंने कबूल कर लिया ते सारे मेरी तरफ दिल दिखता गरियां तक सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम
2: छोटी जी थानू एक गजल सुना दी है
0: जी जी जी अच्छा छोटी क्या बड़ी सुना दे कोई मसला नहीं जी
2: चलो मैं लम्हों को वक्त की पकार देता हूँ मैं लम्हों को वक्त की पकार देता हूँ इसी लगन में कई शामें गुजार देता हूँ
0: क्या कह रहे
2: मैं गम की कश्ती को डूबने नहीं चाहता मैं गम की कश्ती को डूबना नहीं चाहता वो बढ़ जाए तो कुछ उतार देता हूँ
0: क्या कहने
2: खुशियाँ कोई मांगे तो मुफ्त में देता हूँ।
0: बहुत खूब।
2: खुशियाँ कोई मांगे तो मुफ्त में देता हूँ, गम मांगे कोई तो हजार में देता हूँ।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने।
2: मैं यूं ही हर एक से बेरबत नहीं मिलता।
0: वाह।
2: मैं यूं ही हर एक से बेरबत नहीं मिलता, हर शख्स को उसका म्यार देता हूँ।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
2: बदला लेना मेरी फितरत में नहीं है मोहसिन।
0: हाँ।
2: बदला लेना मेरी फितरत में नहीं है
0: मोहसिन,
2: कोई खजाए दे तो बदले में बहा देता हूँ।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, क्या कहने क्या कहने, बहुत आला बहुत आला, वाह वाह। अपना ख्याल रखे, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बाहर आगे, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको हमेशा
2: खुशियां दे।
0: आमीन आमीन आमीन, अल्लाह हाफिज, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये आपके लिए। कमाल का दिया, इन्होंने बहुत खूबसूरत शायरी की है, और अली राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने इतने अंदाज, बड़ा प्यारा अंदाज आपका, बहुत शुक्रिया आपका भी। यहाँ छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पर हमारा साथ देने बहुत बहुत शुक्रिया जानी है, और जानी को भी हम वेलकम कहेंगे, जी आई कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे थोड़ी देर के बाद, और उनकी ये खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिलेगी। और आजकल बड़ा ही खूबसूरत गाना गुनगुना रहे हैं, बड़ी खूबसूरत इनकी आवाज़ है, बड़ी प्यारी आवाज़ है, और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर एक और उन्होंने कहा कि है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी भी मैं उनकी तारीफ करना काम है, और वो भी आ गए और छा गए, और थोड़ी देर के बाद उनके साथ मुलाकात होगी हवा के दोष में। और यहाँ पे निक्की जी ब्रेक गई, और आपने कहीं पे जाना नहीं है, यू आर लिसनिंग टू सुनर रेडियो ऑन नॉट फॉरगेटिंग ऑन डीएबी प्लस, और बहुत बहुत शुक्रिया ऑन नॉट फॉरगेटिंग www.sunriseradio.fm थ्रू आउट द वर्ल्ड, लॉन्ग एज यू गो द फैसिलिटी फॉर द इंटरनेट यू कैन कैच मी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक गई, ब्रेक के फौरन बाद है यहाँ पे धमाका होगा, कमाल कमाल हो गया, क्या कहने जी क्या कहने, कीप इट लॉक्ड।
3: क्या आप किसी खास तकरीब पर एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है, मेहंदी निकाह सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
3: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
5: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
6: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
5: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
6: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग सनराइज, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे मीठा जी हैं, उनको यहाँ पे वेलकम कहेंगे, जी आई कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, और यहाँ पे वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
7: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چشم روشن دل ماشا با کمال لا جواب و تعالی با عزت با وقار با ذوق با شوق، ہر دل عزیز شخصیت بہت نفیس بہت لطیف بہت شفیق، میرے پیارے میرے محترم عالی جناب عزت باب صاحب صدر گرامی ہے قدر جناب چیمپئن بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آج تو کیا کہنے، ہمارے یہاں بھی ہماری عید ہو گئی ہے، اور بہت اچھا لگا کہ آپ آئے اور بہار آ گئی۔ آج تک کس کس کی میں تعریف کروں، ایک سے بڑھ کر ایک کالر نے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ میرے اپنے میرے سجن کی محفل ہے، اور سجن آ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ اور آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟
7: جی اللہ تعالیٰ کا بے حد مشکور منون، اور ماشاءاللہ آپ جیسے مہان لوگوں کی ماشاءاللہ، اور آپ جیسے اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی، اور آپ کی بہت بہت نوازش ہے، اور آپ کا بہت بہت کرم ہے کہ جو انہوں نے مجھے کال کی ہے اور میری کلیئر دریافت کی ہے، میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا
0: کروں۔ میرے بھائی، ہمارا فرض بنتا ہے میرے بھائی، اور آپ کو پتا ہے نا کہ دو تین دن غیر حاضر ہو جائے نا بندہ، تو میں ان کی جو میری पुरानी आदत है, बुरी आदत है वैसे मेरी, और मैं हाल वाल पूछता कि मैं कहता हूँ अल्लाह खैर ही करे, पता नहीं किधर चला गया वो बंदा। तो इसलिए और जो मेरे अपने मेरे सज्जन हैं माशाल्लाह, उनके साथ हमेशा ही अच्छे अंदाज से, बड़े प्यार के अंदाज से हम मिलते हैं, एक दूसरे का हाल वाल पूछते हैं, कि क्योंकि आजकल दुनिया में वो चीज़ ख़त्म हो गई है, जो हाल वाल पूछना, एक दूसरे की कदर करना, रिस्पेक्ट करना, वो ख़त्म हो गई चीज़, ये बहुत ही कम लोगों में रह गई है। जी
7: जी माशाल्लाह, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मास्टर जैसे कहते हैं ना कि आप जैसे अब भी इस दुनिया में कदरदान बहुत हैं, यकीन करें कि आप जैसे लोग कदर करने वाले जो है ना, आप माशाल्लाह आप जैसे बहुत शख्सियात मौजूद हैं अभी, जिनकी
0: अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और सब मैं ये हमेशा कहें, दुनिया जो ना खूबसूरत है, और इसीलिए दुनिया चल रही है क्योंकि अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, और ये नहीं कि सब ही खराब हैं, अच्छे भी दुनिया में हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप जैसे हैं, हमारे शकील जैसे, शकील साहब हैं हमारे मुर्शिद हैं, और मैं किस किस की तारीफ करूँ, और हमारे राय साहब हैं हमारे, क्या मैं किस किस की तारीफ करूँ यहाँ पर, क्योंकि इतने खूबसूरत हमारे मेरे अपने मेरे सज्जन हैं माशाल्लाह, और सज्जनों की महफिल है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सुन के आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। जी
7: सबसे पहले तो यकीन करें कि मेरे लिए ये इतने वैसे फख्र है, यानी कि मैं क्या कहूँ कि बाकमाल और लाजवाब ये शख्सियात तो आपकी माशाल्लाह आती हैं आपके प्रोग्राम में, और माशाल्लाह जितना बिजी और माशाल्लाह जितना माशाल्लाह मियारी प्रोग्राम आपका होता है, तो मेरे मेरा कल सुबह ही मेरी बात हुई थी आपने उस्ताद मोहतरम जनाब किबला शकील साहब से
0: जी।
7: तो उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि परवेज भाई का प्रोग्राम इतना बिजी होता है कि कॉल मिलना ही बहुत मुश्किल है, जब मिल जाए तो समझ लो कि लैटरी लाते
0: हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पंच पाक का करम है, उनकी करम है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और ये मैं कुछ भी नहीं, मैं जो खाक खाक हूँ और खाक ही जाऊँगा और आऊँगा, और मिट्टी का बना हुआ मिट्टी में जाऊँगा, और यही है, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, और उनका कमाल है जो भी, और आप जैसे भाई हैं जो मेरे लिए दुआएं करते हैं, और ये उसका जो फल मिल रहा है हमें माशाल्लाह।
7: सर मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी फैमिली के साथ, आपके संगत साथ के साथ, अहलो यार के साथ, आपके पूरे खानवादे के साथ मेरी बहुत सी दुआएं और नेक ख्वाहिशात हैं, और सभी के लिए जो भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं आपके माशाल्लाह, इस रेडियो की माशाल्लाह इतनी नशरियात खूबसूरत होती है, जहां जहां तक जिन कानों तक पहुंच रही है जनाब, सभी के लिए मेरी बहुत सी दुआएं होती हैं, यकीन
0: करें माशाल्लाह माशाल्लाह जो सुन रहे
7: हैं। सबसे पहले तो आपके रेडियो के लिए दुआएं कि अल्लाह ताला आपके इस रेडियो को दिन दुगनी रात
0: चौगुनी, आमीन आमीन आमीन आमीन,
7: अल्लाह ताला इसके साथ जो भी पूरी टीम जितनी भी है और जो भी इसके साथ वाबस्ता है किसी लिहाज से जो एक्सरसाइज करते हैं, सभी को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ता फरमाए, उनके इज्जत में रिज़्क में बख्श में इजाफा ता फरमाए,
0: आमीन आमीन सुम आमीन हक आमीन।
7: तो माशाल्लाह जो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हस्तियां मुझसे पहले आ चुकी, चौधरी फरियाद साहब आए थे माशाल्लाह, तो अभी जो माशाल्लाह पर्सनैलिटी मुझसे पहले
0: अली राय साहब जी, अली साहब जी माशाल्लाह
7: खूबसूरत आवाज और खूबसूरत अंदाज माशाल्लाह, तो और मुझके मेरे पास जो हस्तियां माशाल्लाह
0: वो आपके लिए सरप्राइज होगी, वो कौन, मैं अभी मैं कहूंगा ना, आप कहें कि मैं जा रहा हूँ, ये लो पेन ये लो पेपर, तो मैं जा रहा हूँ, तो मैं नाम नहीं लूंगा उनका, क्यों कि मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ और उनसे भी सुनूंगा, क्योंकि आप जैसे माशाल्लाह महान और खूबसूरत, और क्योंकि आप टाइम निकाल के पहले ये बताओ कि खाना शाना खा लिया आपने, बहुत खुशबू आ रही है, महक आ रही है।
7: हम फकीरों का कौन सा खाना होता है, क्योंकि हम लोगों का खाना जो है ऐसा ही होता है,
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, करम देखो कि ये भी है अल्हम्दुलिल्लाह, देखो अच्छे दोस्त होना तो ये एक खूबसूरती है माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह देख के, हम दुआ गो हैं आपके लिए भी, उनके दोस्तों के लिए भी, और ये एक खूबसूरती है, ये खाना छाना तो हम खाते रहते हैं, एक बहाना होता है मुलाकात करने का। जी
7: बस सब दोस्त बाप इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कहते हैं चलो जी आप चलते हैं, जाके कोई लंगर पानी कार के आते हैं, हम तो लंगर पानी क्या
0: लंगर पानी ऐसे ही है ये चीज़ है ना जो बड़ी खूबसूरत चीज़ है, और वही बात हो रही है ना कि हम कहते हैं कि सब कुछ है ना टाइम देना चाहिए एक दूसरे को, फैमिली को टाइम देना चाहिए, दोस्तों को टाइम देना चाहिए, और जिंदगी में ना एक दूसरे के साथ यू नो दुख सुख बांटना चाहिए।
7: सही फरमाया, मेरे ख्याल मेरी जो है ना बात बहुत तवील, क्योंकि वो ही बात हो जाती है कि मेरी जो बात होती है ना इतना तूल पकड़ लेती है, यकीन करें बाद में आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है वो हमारे।
0: चलो कोई बात नहीं, चलो आप सुनाएं और जो शेर शायरी लेके आए हैं हमारे लिए और शामीन के लिए, फिर बाद में पता क्या होगा, फिर बाद में मुझे गिला आएगा कि यार वो आए तो आपने उनको मौका नहीं दिया, वो शेर शायरी के वो करते हैं गाना सुनाते हैं, तो आप सुनाएं। जी
7: मैं यकीन करें वल्लाह बखुदा मैं हल्फन और कसमन ये कह रहा हूँ
8: कि मैं यानी कि सुनाने की बजाय जो है ना मैं सुनने का बहुत मैं कहता हूँ कि आप जब हुक्म करते हैं ना जब आपका हुक्म हो जाता है ना देखिए
0: नहीं अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि आप बिलीव करें कि जो आपकी ये हाँ जो नशर और जो आवाज़ जा रही है पूरी दुनिया में जा रही है और पता नहीं किस किस कोने में आपकी जो आवाज़ को पसंद किया जाता है और करते हैं और जो फीडबैक मुझे मिलती है 11 बजे के बाद जब मैं प्रोग्राम ख़त्म करता ना तो यहाँ पर कॉल्स आती हैं कोई ना कोई बंदा जो कहता है कि यार फलाने का शुक्रिया अदा कर दें फलाने का शुक्रिया अदा कर दें उन्होंने अच्छा किया ये किया वो किया पिछले हफ्ते उनको हमारे शकील साहब को लाइन नहीं मिली है तो मुझे डांट पड़ी है बिलीव करें मुझे डांट पड़ी है
8: सबसे पहले तो जनाब मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को और जनाब मोहतरम अहमद शहजाद भाई साहब को बहुत बहुत सलाम और मुकर्रम मुअज्जम मेरे लिए नायत ही काबिल एहतराम हैं जनाब मोहतरम शकील साहब हैं उनको एम खान साहब हैं चौधरी फयाज साहब आए थे माशाल्लाह जी बहुत अच्छी शायरी करके गए अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए हैं जी ऐसे लोग जो होते हैं ना यकीन कर ऐसे लोग जो होते हैं ना वो प्रोग्राम का एक सरमाया होते हैं यकीन
0: वाकई कोई शक नहीं कोई शक नहीं
8: तो इनकी वजह से ये प्रोग्राम को 4 चांद बल्कि 14 चांद लगते हैं
0: यकीन हाय हाय हाय 14 चांद माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह
8: तो आमीन महबूब लाई साहब हैं राणा नवीद साहब हैं मोहतरम वाजिद साहब हैं जुवेद अमीर साहब हैं जंगीर साहब हैं काशिप भाई हैं कामरान भाई हैं चौधरी मुजफ्फर साहब हैं आपी गजाला जदी साहब हैं अतीका आपी है अदीबा आपी है आपी शनाज मंसूर साहब हैं आपी अमेरा जी हैं नदीम मंसूर साहब हैं आपी नईद है मोहतरमा सैम जी हैं कंवल साहब हैं और जो हमारे भाई जो टैक्सी ड्राइवर हैं जो डिलीवरी ड्राइवर हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जो टेक अवे में काम कर रहे हैं जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और जो हमारी माएँ हमारी बहन हैं हमारे बुजुर्ग इस वक्त किचन में काम कर रहे हैं जो आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं जिन जिन समातों तक जिन जिन कानों तक आपकी खूबसूरत आवाज़

0: तेरी रंगीन निगाहों का असर है ऐसा,
1: वाह,
0: जैसे सैल पे कोई साज बचा कर दे।
1: हाय हाय मकरर जी, मकरर मकरर, क्या कहने क्या कहने, वाह
0: जी शुक्रिया। तेरी रंगीन निगाहों का असर है ऐसा,
1: वाह,
0: जैसे सहल पे कोई साज बचा कर देखे। रास्ते धूप के हों फिर कोई बात नहीं,
1: वाह क्या कह रहे।
0: जुल्फ की ठंडी सी छांव में आकर देखे,
1: बहुत खूब।
0: जिंदगी नाम है चलने का, रुकेंगे कब तक,
1: वाह।
0: हर कदम पर नया मंजिल का पता कर देखे। बहुत शुक्रिया। अक्स में तेरे सिमट आती है दुनिया पूरी।
1: आहा
0: चैंपियन भाई
1: जी जी,
0: ये बहुत काबिल गौर शेर,
1: बहुत ही काबिल गौर है, बाकी कोई शक नहीं।
0: अक्स में तेरे सिमट आती है दुनिया पूरी
1: पूरी, वाह।
0: तू हंसे तो हम भी खुशबू को उड़ा कर देखें।
1: आए हाय हाय मकरन मकरन मकरन जी, वाकई वाह वाह वाह, कमाल का शेर, वाह कमाल का, कमाल,
0: वाह
1: माशाल्लाह, क्या कहने।
0: सिमट आती है दुनिया पूरी, तू हंसे तो हम भी खुशबू को उड़ा कर देखें,
1: बहुत खूब।
0: आखिरी शेर में आपकी समातों की नजर करना चाहता हूँ, उसी चाहूंगा
1: जी जी।
0: रात जलती है तो रोशन हो चिरागे उल्फत,
1: आहा।
0: आज की रात अनीस उनको बुला कर देखें।
1: हाय हाय क्या कहने क्या कहने क्या कहने, वाह
0: सर बेहद शुक्रिया,
1: बहुत ही खूबसूरत शायरी करते हैं, कमाल की कमाल कर दी आपने, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज, और जो शायरी हमने भी इंजॉय की और आपने भी इंजॉय की है, और हमें अच्छा लग रहा है कसम से, बहुत मजा आया, बहुत खूबसूरत, क्या कहने।
0: ये आपकी मोहब्बत है, और माशाल्लाह आपके सुनने वाले जो इतना प्यार, इतनी शफकत, इतनी मोहब्बत, और इतने उनसे नवाजते हैं ना, क्योंकि हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जो हम उनकी खिदमत पेश करें, ये तो इन लोगों की मोहब्बत है जो हम बेसुरे।
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात ना करें, ऐसी बात ना करें मेरे भाई, आपकी कमाल की बात है, और खूबसूरत अंदाज है, बड़ा ही प्यारे प्यारे हैं माशाल्लाह, खुद ही प्यारे हैं।
0: मेरी सर जी, मेरी बहुत सी दुआएं आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए, और इस उम्मीद पर मैं आपको अलविदा कह रहा हूं कि आप भी मुझे अपनी नेक दुआओं में याद रखें
1: हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह जी वाह, कमाल हो गया जी, कमाल कमाल हो, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: हजूर कैसी थी वीज़ आपकी?
2: बस आपकी दुआओं से अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र
1: माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया माशाल्लाह, और क्या कहेंगे वो, आपने पता नहीं क्या कर दिया मेरे भाई, हम आपके दीवाने हो गए।
2: नहीं ऐसा ना कहो,
1: अच्छा
2: हमें हमें ऐसा ऐसी बात जो सुन कर ना वो रात की नींदें उड़ जाती
1: वो मुझे वो गाना मुझे याद आ गया, वो
2: इसी बात पे वो शेर याद आ गया कि कोई रुलाता है कोई हंसाता
1: चाहता है, वाह।
2: कोई रुलाता है कोई हंसाता है, दिल में रहने वाले दिल तोड़ ही जाते
1: हैं, वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या
2: बड़ी मुश्किल हो जाती है बिना उनके जीना,
1: आए हाय
2: कोई अपना बना के छोड़ जाता
1: है, वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, हाय हाय क्या कहने मेरे भाई,
2: कहते हैं कि छोड़ दिया लोगों को बेवजह परेशान करना,
1: आए हाय
2: छोड़ दिया लोगों को बेवजह परेशान
1: करना,
2: जब कोई अपना समझता ही नहीं तो बेवजह अपनी याद लाकर क्या करना,
1: ओए होए होए इसको दोबारा करें, मुकरर मुकरर, क्या बात है क्या बात है क्या बात,
2: सुनो सुनो दोबारा सुनो कि छोड़ दिया लोगों को बेवजह परेशान
1: करना, वाह वाह,
2: जब कोई अपना समझता ही नहीं तो बेवजह अपनी याद लाकर क्या करना,
1: वाह वाह वाह वाह वाह, कमाल का दी, ब्यूटीफुल।
2: नफरत है अकीर बना देती है, मोहब्बत भी आशिक को फकीर
1: बना देती है, वाह वाह वाह वाह, क्या कहने मेरे भाई क्या कहने, बहुत ही आजकल तो बहुत रोमांटिक हो गए मेरे भाई, क्या कहने क्या कहने,
2: बस करो की ऐसी भी है, ये आप
1: ओए ओए ओए ओए, एक मुझे गाना मुझे बहुत ही प्यारा गाना है वो मुझे याद आ गया है, और मैं यहाँ पे गा नहीं सकता हूँ, ये ना हो कि फाइन हो जाए तो मैं ऑफ एयर आपको बता दूंगा,
2: आपको हम सुनाते
1: आज नबी बन के, वाह जी वाह, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह, गो अहेड।
2: हम तेरे शहर में,
1: वाह।

और अपनी आँखों में छुपा रखा है जुगनू मैंने, अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने अपनी।

0: दे
1: वाह
0: हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे हम तेरे शहर में आए हैं जाते जाते आखिरी शेर है के
1: जी जी
0: शाला वसदार वे देश प्यारे विच
1: आहा
0: शाला वसदारों में देश प्यारे भी जिथे आज कल डेरे लाए फिरना है
1: वाह वाह क्या कहने
0: तेनु दुख ना देने शरीक मेरे
1: आहा
0: जिना नाल तू संगत बनाए
1: फिरना है आय आय क्या कहने क्या कहने बहुत खूब
0: असी फेर भी तेरे नौकर हां
1: आहा क्या कहने
0: ओवे साडी कदर कटाई फिरना है अठे टोर जनादा जानी दा केड़े चा विच लंगे पाई फिरना
1: वाह वाह कमाल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमाल का दी मेरे
0: तो पीते हैं सभी गम को बुलाने के लिए
1: आहा
0: यूं तो पीते हैं सभी गम को बुलाने के लिए मैं तो पीता हूँ जरा होश में आने
1: के लिए वाह क्या कहने मेरे भाई
0: भूल सकता हूँ भला उनकी यादों को
1: आहा
0: वो तो कहता है मुझको भूल जाने के लिए अपनी आंखों से पिला दे ऐसे साखी फिर लब ना हिले और मंगाने के लिए
1: हाय हाय हाय हाय बहुत खूब
0: तू जो रूठे तो जमाना भी रूठ जाता है मैं शायरी करता हूँ तुझको मनाने के लिए
1: वाह वाह वाह कमाल कर दिया जानी कमाल कर दिया मैं सलूट करता हूँ मेरे भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका और फीडबैक आपके लिए
0: थैंक यू सो मच आपने हमें इस काबिल समझा आपने
1: नहीं नहीं नहीं आप हमेशा ही समझे और आपकी जो आवाज़ है बड़ी प्यारी आवाज़ है बहुत खूबसूरत आवाज़ है और हम अर्ज करेंगे आपको अर्ज करेंगे कि नेक्स्ट आवर में आए और एक और बॉलीवुड का गीत सुनाए हमें और 10 o'clock के बाद आप दोबारा फोन करेंगे
0: बहुत है पता है क्या गीत तो बहुत है सिर्फ टाइम नहीं
1: टाइम ही नहीं है मुझे पता लगे रहा कि आप मोटरवे बैठे और इंतजार में है
0: कि पार की है और मैंने बोला कि भाई को मैंने टाइम दिया
1: माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया खैर अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें और ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत रब रखा बहुत बहुत शुक्रिया ये थे हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त जितने की मैं तारीफ कर रहा हूँ कम है और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और यहाँ पे हमने करना है जल्दी जल्दी टाइम चेक और विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
2: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
1: That time in the studio is 49 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. Yeah, we will break a little break. Foreign baat hai. Aur jinka intezaar tha, wo aa gaye hain aur bada hi acha lag raha hai. Hamara program mukammal ho chuka hai. Kyunki wo aa gaye hain aur chha gaye hain aur unke hum sunenge is hour mein bhi aur next hour mein bhi sunenge. Kyunki jo unki ye shayari hai aur jo gair hazri hui unke pichle program mein, to wo hum hazri usko puri karenge. और वो आपको पता है वो कौन है और कहां से हमारे मुर्शिद आ गए और छा गए
3: नफसेन जायकातुल मौत
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 दास ब्रेडफोर्ड 7230300 Sunrise and music
5: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
6: It's a classic hit. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू सनराइज रेडियो। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। और ये हैं हमारे मुर्शिद हैं, शकील साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम जी, है ना, खुश आमदीद। और आपके चाहने वाले वो इंतज़ार में थे कि आप आएंगे, और हमारी खुश नसीबी है कि आप आ गए, माशाल्लाह, वेलकम।
1: तो पहले तो तमाम सुनने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम।
1: वाजिद भाई हैं, डॉक्टर मलिक साहब हैं, चौधरी रुखसार साहब हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, किशन भाई हैं, चौधरी फरियाद साहब हैं, लायतर सैन साहब हैं, हमारे सोहेल अख्तर साहब,
0: माशाल्लाह,
1: सारा साहब हैं, तीखा जी हैं, सुमित्रा बहन हैं, गजाला जी हैं, रेखा जी हैं, समी जी हैं, गजाला साहबा, रुखसाना साहबा, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। और आपको पिछले आवर में मुझे डॉक्टर मलिक साहब ने फ़ोन किया था, माशाल्लाह, उन्होंने आपको सलाम पेश किया। आदर्श सोहेल अख्तर साहब हैं, उन्होंने सलाम पेश किया, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह आपको आपको वेलकम किया है। और हमारे रॉबिन सारे जो न्यूयॉर्क में प्रोग्राम सुना जा रहा है, तो वो भी आपको सलाम पेश करते हैं।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: तो अयूब कासिम है, उनकी गजल है
0: जी जी।
1: कहते हैं, फिक्र कर उकबा की इज्जत का अगर अरमान है।
0: आहा, क्या कहने।
1: फिक्र कर उकबा की इज्जत का अगर अरमान है, चार दिन दुनिया फानी का बशर मेहमान है।
0: आहा हा हा, क्या कहने, बहुत खूब,
1: शुक्रिया। खैर और शर का जायजा लेता रहा जो हर नफ्स, चश्मे हक आगाह में बेशक वही इंसान है।
0: वाह जी वाह, कमाल कर दिया।
1: आए हैं दुनिया में काम अच्छा अच्छे करने के लिए, आए हैं दुनिया में काम अच्छे करने के लिए, वरना समझो जिंदगी गुमनाम है, बेजान है।
0: वाह जी वाह, बहुत खूब।
1: जिनको रुस्वा कर रहा है खुद परस्ती का नशा, उनसे उम्मीद वफा जो रखते वो नादान है।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: मोजे गम से सिर्फ टकराना नहीं कोई कमाल, पुरसकों माहौल भी है दोस्तों तूफान है।
0: आहा हा हा, कमाल।
1: जिसने कल अपनी मोहब्बत से किया था आशना,
0: वाह,
1: जिसने कल अपनी मोहब्बत से किया था आशना, वादाए मेहर वफा से आज वो अनजान है।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: जाने वाले अपनी यादें दे गए हमें, आखिरी शेर
0: जी जी।
1: जाने वाले अपनी यादें दे गए हमें, मेरी तनहा जिंदगी पर उनका ये एहसान है।
0: आहा हा हा, कमाल कर दिया, ब्यूटीफुल, कमाल, कमाल कर दिया। एक और हो जाए, और क्या कहने।
1: मेहरबान अमरोही इनका नाम है
0: जी जी।
1: वो कहते हैं, मेरे हालात से मुंह मोड़ के जाने वाले,
0: आहा,
1: मेरे हालात से मुंह मोड़ के जाने
0: वाले,
1: तुझसे कुछ पूछ रहे हैं ये जमाने वाले।
0: वाह वाह वाह, क्या कहने।
1: देख कर मुझको अब राह बदल लेते हैं, देख कर मुझको अब राह बदल लेते हैं, मेरी आवाज से आवाज मिलाने वाले।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: तू भी आ जाएगा हालात की जद में एक दिन, तू भी आ जाएगा हालात की जद में एक दिन, मेरी बर्बादी के अफसाने सुनाने वाले।
0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब।
1: जानबे शहरे वफा वो समझ कर जाना, जानबे शहरे वफा सोच समझ कर जाना, लौट के आते नहीं है वहाँ जाने वाले।
0: वाह कमाल कर दे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वाह,
1: दिल के उस टूटते रिश्ते का भरम रह जाए, दिल के उस टूटते रिश्ते का भरम रह जाए, एक नजर देख ले रूठ के जाने
0: वाले। हाय हाय हाय हाय, कमाल कमाल।
1: आ कभी देख मेरा हाल जुदाई या कर,
0: आहा,
1: गैर की बज़म में हंसने हंसाने
0: वाले। हाय हाय हाय, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। वाह,
1: वक्त से सीखा है मैंने ये हुनर जीने का,
0: वाह,
1: वक्त से सीखा है मैंने ये हुनर
0: जीने का,
1: खुद ही गिर जाते हैं औरों को गिराने के।
0: आए हाय हाय, कमाल कर दे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
1: ये आखिरी शेर
0: जी जी।
1: ये मेहरबान शायर है ना, वो कहता है मेहरबान दिल का है नाजुक ये जरा ख्याल रहे, मेहरबान दिल का है नाजुक ये जरा
0: ख्याल रखे,
1: है मेरे दिल पे नए जख्म लगाने वाले।
0: वाह कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बड़े अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, और आज हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है आपकी वजह से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें, अल्लाह रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह जी वाह, कमाल कर दिया इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हमारा दोबारा सिलसिला शुरू करेंगे नखावर में, क्योंकि हमारे साथ माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम भी आ गए हैं माशाल्लाह, और जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, हमारे लाडले भी आ गए हैं, और पापा जी आपको भी वेलकम कहेंगे नखावर में, बहुत बहुत शुक्रिया आपके पापा शफीक जी, और बहुत बहुत शुक्रिया पापा जी, वी ऑल लव यू पापा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आदर्श फैल अख्तर साहब भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं और ये सुन के, और आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है माशाल्लाह, आपने दुआएं दी हैं सब सुनने वालों को, और हौसला अफजाई किया और माशाल्लाह, और आपको हम वेलकम कहेंगे नेक्स्ट आवर में, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। और राय अजहर हुसैन साहब हैं, वो भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह, इल्मी गुफ्तगू करते हैं, मोटिवेशन बात होती है माशाल्लाह, और बड़ी खूबसूरत बड़ी और एक खूबसूरत अंदाज़ उनका, बड़ा प्यारा अंदाज़ है, और कुछ ना कुछ वो लेके आते हैं माशाल्लाह जब भी प्रोग्राम शिक्र करते हैं, और माशाल्लाह की जो गुफ्तगू है बिलीव करें बड़ी पाए की होती है, बड़ी खूबसूरत, बिलीव करें इट हैज़ बीन एंड विल बी इज़ वेल, व्हाट अ ब्यूटीफुल जेंटलमैन, व्हाट अ अमेजिंग जेंटलमैन विद अ ब्यूटीफुल, आजकल के दौर की जो है जो गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह, इल्मी गुफ्तगू होती है उनकी भी, और बड़ा ही अच्छा लगता है। क्योंकि मैं अभी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एक दो मिनट रह गए हैं, और क्योंकि अभी मैं गाना लगाऊंगा तो वो मुझे काटना पड़ेगा, कुछ और बात करूँगा, किसी को मैं लेके जाऊँगा, उनको मैं कहूँगा कि न्यूज़ ब्रेक आ रही है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिलीव करें। और जो हमारे सुनने वाले हैं माशाल्लाह वो टाइम निकाल के हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, तो उनका हक बनता है, उनका हमारा भी फ़र्ज़ है, उनका भी फ़र्ज़ है, जो देखो बड़े इत्राम के साथ बड़े प्यार के साथ वो प्रोग्राम सुनते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। यू आर लिसनिंग टू सुंदर रेडियो ऑन नो फॉरगेटिंग ऑन एप्पल प्ले स्टोर ऑन गूगल प्ले स्टोर, यू कैन डाउनलोड सुंदर रेडियो ऐप ऑन नो फॉरगेटिंग ऑन www.sunriseradio.fm ऑन थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑन सनराइज रेडियो is getting bigger and the better day by day, and I want you to look at the website as well and dekhe wahan pe kya ho raha hai, and see the news and everything else every day, keep it locked,
2: broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio, on the hour every hour, this is Sunrise Radio Network News.
3: Center at 10. Vladimir Zelensky's admitted feeling betrayed by Donald Trump over his diesel deal with Russia. The Ukrainian leader's been in Downing Street receiving a rare ceremonial welcome and offers of accelerated military support from Andy Burnham. But he's also told Piers Morgan his country is losing a strong partner and the US is not on the right side of history. Ukrainian MP Leshia Veshlenko's in Kyiv.
4: There is President Trump, who is for some reason trying to appease the aggressor at all costs by putting the blame on the victim. It's not a deal, it's a disgrace. There is no need for the United States to suddenly be importing from Russia.
3: Russell Brand's been described as a ruthless and manipulative predator as his rape trial got underway. The actor and comedian, who denies 7 offences, is accused of assaulting women in a hotel room, a bar toilet and his own home. Multiple properties have been searched as part of an investigation into a suspected arson attack in Ireland which killed 4 people. Philip and Kim English and children Callum and Jaden died in the fire in Waterford yesterday. The King sending his well wishes to Pope Leo following his cancer diagnosis. Charles, who is still undergoing his own treatment for the disease, is believed to be writing privately to the Pontiff. He's now recovering in hospital in Rome following surgery yesterday. Liverpool have romped to a 6-3 victory in their Champions League game at Austrian side LASK. Near record summer signing Bradley Barcola silenced his critics after scoring a hat-trick. And his manager, Andoni Areola, says the goal fest was bound to happen.
5: Even yesterday training, I could feel, no? He was very lively, very... Sometimes you feel these things, no? And you never know how he's going to play next day. But it wasn't like a big surprise because we were feeling, no? He was in a good place before the game.
3: Also in the Champions League, Manchester City have lost 4-2 to Champions League holders PSG. It was their first home game since being found guilty of breaking Premier League financial rules. And in tonight's other game, Aston Villa hammered Turkish side Fenerbahce 6-0. That's the latest. I'm Stevie Shillinglaw.
2: Sunrise Radio Network News.
6: A London businessman has been jailed for 7 years for his role in a £266 million money laundering operation centred on a Bradford jewellery firm. 58-year-old Samir Jagirdar from Croydon was sentenced at Leeds Crown Court. West Yorkshire Police found his hat and garden company, Pure Nines, was used to deliver criminal cash to Bradford-based jewellers Fowler Oldfield. The money was used to buy gold, which was then shipped to Dubai. The offences took place between 2012 and 2016. Jagirdar had previously admitted money laundering and has also been banned from acting as a company director. 6 other men have already been sentenced in connection with the investigation. Bradford's popular Lister Park Lantern Parade is returning on Friday, the 30th of October. This year's theme is Celebration of Life, with hundreds of handmade lanterns, giant illuminated puppets, and live music bringing the park to life. Entertainment begins outside Cartwright Hall at 4:30, with the parade setting off at 5:30. Families can also join lantern making workshops earlier in the day, costing £6 per lantern, with advance booking required. Organisers say the event celebrates creativity, community, and remembering loved ones. This is Sunrise Radio News with Alex Shawson. Vandals have caused further damage at Wellhome Park in Brighouse, just months after it reopened following major flood alleviation work. Stone slabs have been ripped from walls near the Rose Garden and smashed, while other stones have been pulled away. Friends of Wellhome Park have condemned the damage as mindless, saying it costs taxpayers and affects a much-loved community space. The park was also targeted by fires earlier this year. Calderdale Council has been thanked for securing the damaged area. Volunteers are urging residents to report further incidents to police. A free family Halloween quiz is still planned for Saturday, the 31st of October. A 12-year-old schoolboy from Sutton has made history by becoming Britain's youngest ever international chess master. Supratik Banerjee, who attends Sutton Grammar School, has broken a record that stood for 22 years. The prestigious title is just one level below chess grandmaster. His achievement is even more remarkable because he began playing in Glasgow with limited coaching and resources before moving to London. His mother, Pooja, says the journey has involved perseverance, hard work, and family sacrifice. The English Chess Federation has praised his talent and determination, saying he has a wonderful future ahead of him. Supratit already represents England in international competitions. Shah Rukh Khan has reportedly begun the final filming schedule for his upcoming action thriller, King in Mumbai. The film will also feature daughter Suhana Khan, while a new teaser could arrive on his birthday, November the 2nd. That was Sunrise Radio News.
7: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow. Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू सनराइज रेडियो। और यहाँ भी हमने करना है, टाइम चेक करना है, क्योंकि हमारे साथ कॉफी कॉलर्स हॉल पे हैं और ये ना हो कि देर हो जाए।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: Well, our time in the studio is 7 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Farvez Khan. And here we are, our very most Moses mehman hai hamare, mashallah, jitni bhi inki main tareef karu kam hai. Aur ye hamare ustad mohtaram hai, hamare mohtaram, hamare Bradford ke aan baan shaan hai, hamare sunrere ki shaan hai aur baan bhi hai, aur mashallah hamare M Khan ji hain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहु। जितने आला खूबसूरत इनको लुभाने वाले कलमात के आपके अपने हक में सब सुनने वालियां
0: जी
2: वास्ते यहाँ तक रेडियो सनराइज की आवाज जाती है
0: जी,
2: आपके दिल और रूह को मनवर फरमा दे।
0: आमीन सुम्मा आमीन हक आमीन।
2: हम इकबाल की इतर तवज्जो करता हूँ सब सुनने वालों को
0: जी।
2: अलामा इकबाल के आम पर जस्जू और गौर व फिक्र भी करें
0: जी,
2: तो जो भी उसके लिए दुआ भी करें। अलामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं, सुन ए गाफिल सदा मेरी, ऐसी चीज है जिसको वजीफा जान कर करते हैं, आहिर उस्तानों में वतन की फिक्र कर

मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तरा देख उसको तो कुछ हो रहा है, अला है, अरा क्या है अला,

आसमानों में न समझोगे मिट जाओगे, गुलस्ताने पाकिस्तान के आरसों आरी

0: है अमुल महबूबे तुरत मियां साहब का
1: जी जी
0: अपना रंग है,
1: ये अपना रंग है वाकई
0: साहब। मियां साहब इरशाद फरमांदे
1: जी,
0: ओ कौन बंदे नू याद करे सी,

0: घर जाड़े सुख इठे ना कुछ खट्टी नहीं से बल ना कोई छड़ ले
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरत कलाम सुनाए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने सब ने इन्जॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें, रब रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे एम खान जी, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और बहुत अच्छा लगा हमारा साथ देने का भी। और यहाँ पर हमने क्या करना है, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम चेक करेंगे, उसके बाद हमारा साथ देने बहुत ही खूबसूरत हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी।
2: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: Our time in the studio is 13 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with Parviz Khan.
3: Sunrise Music. बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
6: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रैडफोर्ड 7230303।
1: Right, welcome back, listener. You're listening to Radio 103.2 FM. हाँ भाई, हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, और हमने इनको मिस किया है। और ये हैं हमारे शुक्रान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
7: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी, चैंपियन मेरे दिल अजीज, क्या हाल है?
1: कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहले ये बताओ कि मैं क्या करूँ आपके बारे में। आपको हमने मिस किया और सुनने वालों भी मिस किया। उन्होंने इतनी फरियाद दुआएं दी आपको, उन्होंने हौसला अफजाई किया आपका, और उन्होंने पूछा भी किधर चले गए मेरे भाई।
7: माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सबसे पहले सबको सलाम। मैं फर्दन फर्दन नाम नहीं मैं ले सकता, मुझे
1: जी
7: मेरे पास ना तो मेमोरी है और इतना याद है ना, लेकिन जो जो जहाँ जहाँ पे भी जिधर जिधर से मैं सुन रहा है
1: जी,
7: उनको मेरी तरफ से सलाम दुआएं बहुत सारी। और ना बस थोड़ा सा फैमिली के साथ बिजी था।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है कि आप फ्री से हैं, ठीक ठाक हैं?
7: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: ये बड़ी ये खुशी हुई जी जी। माशाल्लाह,
7: रब्बे करीम का बड़ा शुक्र।
1: माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
7: तो सर जी, शेर है कि कहता है कि हंसते चेहरों को ना समझो गमों से उजाद।
1: वाह जी वाह, क्या कहने,
7: कितने गम छुपे होते हैं एक मुस्कान
1: के। हाँ हाँ हाँ, क्या कहने,
7: टूटा दिल मुरझाए चेहरे,
1: हाँ हाँ,
7: होंठ फिर भी हंसते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, वाह,
7: यही तो एक खूबी होती है टूटे बिखरे इंसान में।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, क्या अंदाज मेरे भाई, क्या बात क्या बात क्या बात।
7: और सर गाने की बड़ी पुरजोर फरमाइश थी
1: जी जी।
7: कहता कि दिल तेरे नाम
1: हाय हाय,

याद आएंगी गुजरी जो बातें, डूब जाएंगी अशकों में रातें, और भी याद आया करेंगे जिस नाम

मुस्कुराएगी जख्मों की खुशबू, रहना पाएगा खुद पे भी काबू। होंठ भी जब ना खोले खुलेंगे, बोझ तुम कैसे हल्का करोगे। चांद तारों में ढूंढा करोगे, एक साया सा पीछा करेगा, दिल भी रह के चौंका करेगा। सूखे पत्तों की आहट पे अक्सर पीछे मुड़ मुड़ के देखा करोगे। चांद तारों में ढूंढा करोगे, जब पारे असाया।

तन्हा उठ के रातों में भटका करोगे, चांद तारों में ढूंढा करोगे।

0: वाह पापा जी ब्यूटीफुल, क्या कहने योग्य, जितनी तारीफ करूंगा मैं पापा जी, बहुत अच्छा लगा। और हमारे अली भाई आपका शुक्रिया अदा करें, उन्होंने फोन किया, उज़्ज़ा भाई की आपकी, उन्होंने आपको वेलकम किया और बड़ी अच्छी तरह माशाल्लाह उन्होंने इस्लाम भी पेश किया, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह।
1: वालेकुम सलाम वालेकुम,
0: माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा पापा जी। एंड यू नो वी ऑल मिस यू पापा जी, वी ऑल विल एंजॉय योर स्पीकिंग टू यू पापा जी, बहुत अच्छा लगता है।
1: अल्लाह
0: हाफिज़। अल्लाह वालेकुम सलाम। वाओ दैट वाज पापा जी ख्वाजा मोहम्मद शफीक, और हम उनके प्यार से कहते हैं पापा जी। एंड एवरीबॉडी माशाल्लाह इन ब्रैडफोर्ड यॉर्कशायर माजेला मिशन को कहते हैं पापा जी। और पापा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और न्यू यॉर्क से रॉबिन सर आप हमें फ़ोन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप दोबारा फ़ोन करेंगे, आई विल टेक यू ऑन एयरवे एज़ वेल। माशाल्लाह आपने फ़ोन किया है और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। अल्लाह पाक मिशन को खुश रखे, शादाबाद रखे। ये हमारे मोहतरम भाई हैं, दोस्त हैं माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया न्यू यॉर्क से आपने हमें फ़ोन कर रहे हैं। तो आई डू apologize to you कि आप दोबारा मुझे फ़ोन करेंगे, आई विल टेक यू ऑन एयर एज़ वेल। सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपकी भी लाइन ड्रॉप हो चुकी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। सतारा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फ़ौरन बाद यहाँ पे देखते हैं कि हमारा साथ कौन दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, जो भी हेल्प नंबर हैं शुक्रगुजार हूँ उनका भी, ममनून आपका भी कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक होगी, कीप इट लॉक्ड।
2: कुल्लो नफ्सेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, योर लिसनर सनराइज। और यहाँ पे हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान हैं, हमारे मोहतरम हैं, हमारे भाई हैं। और सत श्री अकाल जी पाजी, हाउ आर यू डूइंग रॉबिन सर?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ आर यू सर? यू आर, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने हमें याद कर रहे हैं। हमेशा मुझे फ़ोन करते हैं, माशाल्लाह फ्लश करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और हाउ यू डूइंग सर?
1: I'm doing great, thank you. How are you?
0: I'm brilliant. I'm, you know what, I'm buzzing in here in the studio because you have called me all the way from New York. And you know what, it's a blessing to have you always. And you're very popular, mashallah. And you know what, what can I say about you? Because you, everybody knows you.
1: Thank you so much.
0: You are and, so popular. You are
1: everybody.
0: Ji, mashallah. Or you are more popular than Shah Rukh Khan.
1: Thank you so much. I appreciate it.
0: वाह जी वाह जी। वैसे और आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि यू नो व्हाट, यू मेड माय डे टुडे एज वेल, बिकॉज यू नो वी एवरीबॉडी लिसनिंग टू इन टू द प्रोग्राम एज वेल, एंड इट्स नाइस टू हैव योर कंपनी। व्हाट टाइम इज इन न्यूयॉर्क नाउ?
1: It's 5:37.
0: Wow, that is amazing. Wow.
1: And how that's in the evening.
0: Yeah, that's in the evening as well, yeah. And how's your day been today?
1: They was very good, working from home.
0: What, you working from home?
1: घर से काम हो रहा है।
0: घर से काम हो रहा है, माशाल्लाह, क्या कहने जी। और आज हमारे लिए क्या लेके आए हैं, क्योंकि मुझे पता लग गया कि आपकी जो आवाज़ है और जो आपके जो गीत हैं और जो आपकी शायरी है, मैंने सुना है हमारे चाहने वाले हैं मैनचेस्टर में, उन्होंने हमें आगाह किया है कि आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है और आप ख़ुद भी प्यारे। मैं आपको पहले जानता नहीं हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैं, आई नो यू फॉर सो मेनी ईयर्स।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन मैं तो गाता नहीं हूँ
0: जी जी,
1: मैं अपनी वाइफ से कहूँगा कि गाए वो।
0: अच्छा, वाह वाह वाह वाह।
1: वन थिंग, और एक चीज़ है कि उनको हिंदी या उर्दू आती नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि कोई गाना है।

0: राइट लेडी एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत बहुत शुक्रिया आशा दौर सिंह का और थैंक यू वेरी मच. मुझे काफ़ी कॉल्स आई हैं और दराने पर गाने में और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपने शुक्रिया अदा किया और थैंक यू वेरी मच. गीता जी ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क और कैरोलाइन और रॉबिन सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच. और हमें अच्छा लगा, इतना खूबसूरत आपने गीत गुनगुनाया और यू नो व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक दैट यू हैव सॉन्ग एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल द लिसनर्स दैट एंजॉय दैट ट्रैक एज वेल एंड यू अप्रिशिएट अटैक एंड थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पे हमारे साथ देने सिमी जी हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
1: वालेकुम सलाम, ये कैसे
0: हैं? आई एम ब्रिलियंट फैंटास्टिक, व्हाट अबाउट योरसेल्फ, आर यू एंजॉयिंग द प्रोग्राम?
1: I am absolutely. I had to call. I've been trying to get through to you, but
0: gee,
1: I haven't actually got through to you. I'd just like to say to our lovely princess, all the way from New York, our Gita sister,
0: gee,
1: who has come in tonight with a wonderful song. I would like to dedicate that song and the lyrics to the beautiful couple all the way from New York.
0: Wow, kya kehne ji, kya kehne. And you know what, she's wonderful. You know what, she'll be doing it all those week, you know, I mean, all this track as well. And you know what, the track has
1: that
0: been...
1: That is so much appreciated, all the way from England to New York. We'd like to say thank you and welcome to you to the further programs with your talent. Your song was brilliant. You, every lyric was clear. And we enjoyed every bit of that music.
0: Wow, that's amazing, amazing. That's wonderful as well. And normally I do mention that, well, they normally call me between hours of 8 and 9. And this is the first time that they have come on airway as well. And the both of them and a couple, mashallah. And wonderful it has been as well. And they are the new rival in our family, mashallah. That was amazing.
1: Yeah, we just like to welcome them and would like to hear more from them. So we welcome them to our Sunrise family and to your program.
0: Thank you.
1: And many more programs to come.
0: Wow, gee, thank you very much. And how is your family? Is everybody else is okay? Good, Marshall. Did you enjoy the program that you did from the 8 o'clock? Did you enjoy it? Did that track that I played for you?
1: Yes, I did. Thank you so much. We were driving back from a long drive and there was traffic, so you kept us busy and entertained. So we'd like to appreciate that to yourself. A bit under the weather, but overall we have been listening to yourself and everybody that comes tonight. Well done, and you are brilliant.
0: Wow, thank you very much. Thank you very much for the lovely word for Geeta ji ka aur bahut hi acha laga. And you know what? That is amazing.
1: Just before I go, just before I go, just like to say thumbs up to Geeta all the way to New York and everybody that's in New York listening to her and supporting her from New York. Thumbs up, guys, and we'd like to hear more from you.
0: माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं, आपने तारीफ की है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा. और बहुत बहुत शुक्रिया, आई लिस्ट यू अप्रिशिएट एंड एवरीबॉडी एल्स अप्रिशिएट एज वेल. बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ दैट यू हैव टेकन द टाइम आउट टू यू नो वाली देम एंड दैट इज अमेजिंग. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच. Right, that was the final. और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच. और हमें अच्छा लग रहा है कि आपने भी हमारा साथ दिया. बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच ऑल दोज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिसनर्स दैट हैज केम इन टू द प्रोग्राम बिटवीन आवर्स ऑफ 8 and 9, 9 and 10 and 10 and 11. और शुक्रिया अदा करते हैं मैं सबका. डॉक्टर मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी गाने को इन्जॉय किया, पसंद किया उनको, आपने उनको वेलकम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच. और फिराज साहब, आपने भी फ़ोन किया दोबारा और आपने भी उनको वेलकम किया है और बहुत बहुत शुक्रिया. रॉबिन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. गीता जी और नो फॉरगेटिंग कैरोलाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक दैट यू हैव डन. एंड इंशाल्लाह जल आई सी यू अगेन ऑन संडे इवनिंग बिटवीन आवर्स 8 and 11. एंड आई विल बी ईगली वेटिंग फॉर यू टू हैव अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर यू नो फॉर द लिसनर्स एंड फॉर माई सेल्फ एज वेल एंड फॉर द ऑडियंस एज वेल. एंड थैंक यू वेरी मच टू द लिसनर्स. हम हेर आई पी आर के फिर मिलेंगे चलते on Sunday evening between hours of 8 and 11 where we're going to be having a party in the studio as always. And the people are ringing me now, could you drop your calls? I'm not going to be answering any of your calls because ghar jaane ka time ho chuka hai. Inshallah chal, I'll see you again on Sunday evening between hours of 8 and 11. And yes, keep it locked with the Sunrise Radio, your number one hit music station, Sunrise Radio. And not forgetting, before you go, I will definitely make another beautiful information for you about Sunday Radio. And yes, you listen to Sunday Radio 100.6 FM, 103.2 FM across West Yorkshire, and not forgetting on DAB Plus across West Yorkshire, and that is amazing. And you can also download the Sunday Radio app on Google Play Store, on Apple Play Store, and tell your family, tell your friend, tell your colleagues, tell everybody that tune into Sunday Radio in between the hours of 8 and 11 Wednesday and Sunday. Allah Hafiz and Shabbat Khair. And this track I'm going to dedicate to Gita Ji, aapke liye aur aapki puri family ke liye, and Caroline and Robinson from New York, aapke liye, before I go, and love you and leave you. Allah Hafiz and Shabbat Khair.